0: அடுத்த நிகழ்ச்சி போஸ்ட் பாக்ஸ் நம்பர் 111 டெல்லியில் இருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்கலாம்.
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
3: नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं नीला मलकानिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। साथियों, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि हमारा ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात का फॉलो अप प्रोग्राम है, मन की बात का विस्तार है। प्रधानमंत्री जी जिन विषयों का उल्लेख मन की बात में करते हैं, उन विषयों के विशेषज्ञों को हम आमंत्रित करते हैं अपने कार्यक्रम में और उस विषय के बारे में अपना ज्ञानवर्धन करते हैं उनकी बातों से। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार मन की बात में उल्लेख किया है सेंसस का, जनगणना का, और हमें प्रेरित किया है कि हम इस विषय के बारे में अपनी जानकारी बढ़ाएं और अपनी ओर से पूर्ण सहयोग भी दें। तो इस बारे में हम बहुत सारी बातें करेंगे। स्टूडियो में हमारे अतिथि हैं, हमारे विशेषज्ञ हैं। मैं स्वागत कर रही हूँ सबसे पहले श्री अजय गर्ग जी का। आप भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं और डायरेक्टर ऑफ सेंसस दिल्ली हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर स्टूडियो में।
4: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: और मैं स्वागत कर रही हूँ डॉक्टर जितेंद्र गौड़ा का। आप डीडी हैं, डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस। जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत।
5: बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।
3: तो आइए साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवाते हैं मन की बात का वो हिस्सा जिसमें प्रधानमंत्री जी ने जनगणना का उल्लेख किया है।
6: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए

सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। आपकी दी गई जानकारी

0: और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। आपकी दी गई जानकारी पूरी तरह सुरक्षित रहती है या गोपनीय रखी जाती है? डिजिटल सुरक्षा के साथ इसे सुरक्षित किया जाता है। आइए हम सब मिलकर इस प्रक्रिया में भाग लें, जनगणना 2027 को सफल बनाएं।
1: तो सुना आपने किन शब्दों में प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रेरित किया है कि इस विषय के बारे में हम जानें और अपनी ओर से पूर्ण सहयोग करें। तो अब मैं बहुत सारे सवाल लेकर अपने सभी श्रोताओं के मन में जो सवाल है वो लेकर, अपने साथियों के सवाल लेकर यहाँ स्टूडियो में बैठी हूँ और हमारे जो दोनों विशेषज्ञ हैं आज हम इनसे जानेंगे इनके उत्तर। तो मैं शुरुआत करती हूँ अजय जी से। अजय गर्ग जी, मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब हम कहते हैं जनगणना, तो आखिर इसकी जरूरत क्यों है देश को?
2: हमारी जो नीतियां बननी है
1: जी,
2: तो हमारे पास पूरा लेखा जोखा होना चाहिए कि हमारे देश के विभिन्न प्रांतों में, शहरों में, गांवों में कितने लोग रह रहे हैं, उनका वर्गीकरण क्या है, कितने हमारे यहाँ पर महिलाएं हैं, कितनी पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं, उम्र के हिसाब से किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है। तो तभी आप उसके हिसाब से स्वास्थ्य की, समाज कल्याण की और विभिन्न योजनाओं को आप एक मूर्त रूप दे सकते हैं
1: जी।
2: आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि जनगणना भारत में सबसे पहले 1871 में हुई
1: जी,
2: लेकिन वो एक साथ नहीं हुई थी, मतलब हर प्रांत में अलग अलग समय पे हुई थी, उसे नॉन सिंक्रोनस बोलते हैं। 1881 में पहली बार जनगणना सिंक्रोनस हुई, सभी एक साथ हुई। उसके बाद ये हर 10 साल में एक जनगणना होती रही
1: जी।
2: जनगणना ही हमारी सभी नीतियों का डेटा प्रोवाइड करता है, जिसके ऊपर जैसे परिसीमन हुआ
1: जी,
2: हमारी जो विधानसभा की सीट्स हैं, लोकसभा की सीटें हैं, उन सब पे जनगणना में क्या सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा सिर्फ हम जनगणना में सिर्फ लोगों की संख्या की गिनती नहीं कर रहे हैं कि कितने मेल हैं, कितने हमारे वुमेन हैं, कितने बच्चे हैं, उसके साथ साथ हम जो हैबिटेशन है
1: जी,
2: जैसे जहाँ पे लोग रहते हैं, उसकी भी हम डिटेल इकट्ठी करते हैं कि दीवारें कैसी हैं, छत कैसी बनी हुई है, किस तरीके का ईंधन का इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग, और पानी की सुविधा किस तरीके की है, 30 तरीके की हम एट्रीब्यूट्स इकट्ठी करते हैं
1: जी,
2: जिसमें लोग रह रहे हैं। और इसके बाद जिसे हम पॉपुलेशन इनुमरेशन कहते हैं, जिसमें लोगों की हम संख्या की गणना कर रहे हैं, उसमें लोगों की जो हर व्यक्ति की करीब 25 से 30 हम डिटेल इकट्ठी करते हैं कि कितना पड़ा हुआ है, किस तरीके के एम्प्लॉयमेंट में है वो, उसका जो व्यवसाय का जगह है कितना दूर है उससे, कितना उसे चलना पड़ता है
1: जी,
2: कौन से धर्म का है वो, इस बार हम जाति का भी उनसे डिटेल लेंगे
1: जी,
2: तो इस तरीके से कौन सी भाषा बोलता है वो, तो हमारे पास बहुत रिच डेटाबेस है जिसके आधार पे हम लोग, तो ये मोटा मोटा सा जनगणना का
1: जी। मेरा इससे जुड़ा हुआ ही एक सवाल था, अक्सर लोगों के मन में ये बात आती है कि जब जनगणना की बात है तो सिर्फ ये जान लेना काफी होना चाहिए कि इस घर में 5 व्यक्ति हैं और इस घर में 7 व्यक्ति हैं, यानी हम एक नंबर हैं और कुल संख्या आपको पता चल गई। इतने विस्तार में क्यों जानना है कि हम क्या काम करते हैं, हम कैसे घर में रह रहे हैं? लेकिन अभी आपकी बातों से ही ये जवाब मिला कि आगे जो नीतियां बनेंगी, जिस तरह के बेनिफिट्स दिए जाने हैं लोगों को, उनके लिए भी ये डेटा जो है काम आएगा बाद में
2: जी।
1: तो एक सवाल मैं जितेंद्र जी आपसे पूछना चाहूंगी, जनगणना होनी है ये सबको पता है, लोग तो तैयार भी हैं, इस बारे में बात भी हो रही है, लेकिन उससे पहले पूरा विभाग जो है, पूरा मंत्रालय जो है, वो किस तरह की तैयारियों में लगा है? आजकल काम का कितना दबाव है वो बताएं।
3: देखिए, काम का दबाव तो बहुत है अभी
1: जी।
3: जब आप मंत्रालय का जो तैयारी के बारे में जैसे पूछ रहे हैं, ये लगभग अभी 1 साल पहले ही ये शुरू हो गई थी
1: जी।
3: और ये जनगणना जो होती है ये एक सेंसस एक्ट के तहत होती है, ये 1948। तो पहले हमारे जो मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, वो पहले अपना इंटेंशन पहले वो दर्ज करते हैं गेजेट में। तो ये आई थी आपके जून महीने में आई थी, 2025 जून महीने में आई थी
1: जी।
3: उसके

0: बाद हर राज्य और केंद्र शासित जो अंचल है वो भी अपने मतलब गजट में उसको फिर से रीनोटिफाई करते हैं कि हमारे भी स्टेट में यूनियन टेरिटोरी में भी सेंसस करानी है।
1: जी
0: तो इस तरीके का एनसीटी और दिल्ली गवर्नमेंट ने भी इसको रीनोटिफाई किया था जुलाई में, जुलाई 2025 साल में। तो 2025 जुलाई महीने से लेकर आज तक हर दिन हम तैयारी में जुड़े हैं और अभी
1: जी
0: सेंसस भी ऐसे स्टार्ट हो चुकी है। तो ऐसा कोई काम नहीं है कि मतलब बिना प्री प्लान करते हुए ये होती है
1: जी
0: सेंसस जैसे काम में, कि ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज है। और लगभग लगभग इसमें अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो 50-55 हज़ार से भी ज्यादा लोग इसमें जुड़े हैं अभी काम में।
1: जी
0: जी
1: तो अजय जी, अगले सवाल से पहले मैं आपकी पसंद का कोई गाना यहाँ पर पूछना चाहूंगी, और
0: जी
1: उसके बाद एक और बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन मेरे पास है।
0: जी जी तो मुसाफिर हूँ यारों।
1: जी,
0: हाँ
1: ये गाना पसंद है आपको?
0: हाँ
1: ठीक है, तो आपकी पसंद का ये गीत हम सुनवा रहे हैं अपने श्रोताओं को।

0: बहुत ही प्यारा सा गाना। गाने में तो भले ही जो कलाकार है और जो हमारे सिंगर है उन्होंने कह दिया ना घर है ना ठिकाना, लेकिन हमें अपने घर ठिकाने का पूरा पूरा और सही सही पता जरूर बताना है सेंसेस के लिए। तो अब मैं अजय जी ये आपसे जानना चाहूंगी कि जब हम बात करते हैं जनगणना की, जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारे डिटेल इस समय हम जो हैं वो ले रहे हैं, लोगों के डेटा इकट्ठा कर रहे हैं ऐसे में, और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अपनी ओर से भी जो जनता है वो उसमें सहयोग करेगी, शुरुआत करेगी, तो संख्या बल जो है दुनिया में वो हमारी एक ताकत है, लेकिन जब जनगणना की बात आती है तो यही काम बहुत बड़ी चुनौती भी बन जाता है।
1: जी
0: तो ऐसे में ये बताएं कि आपने किस तरह का जो पूरा एक तंत्र है वो खड़ा किया है, किन लोगों को शामिल किया है इसमें, और वो कितने रिलायबल हैं, हम कितना भरोसा करते हैं उन लोगों पर जो घरों में आएंगे और हमारा डेटा इकट्ठा करेंगे।
1: जी इसमें क्या होता है कि जो घर में जाते हैं, हर
0: जी
1: घर में विजिट करते हैं, उनको हम इनोमिनेटर कहते हैं।
0: जी
1: उसमें हमने क्या किया है कि दिल्ली को करीब हमने 46,000 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया है, और हर ब्लॉक में करीब 200 के आसपास घर हैं।
0: जी
1: तो एक ब्लॉक को एक इनोमिनेटर का काम दे दिया जाता है, और इस तरीके से 6 इनोमिनेटर के ऊपर एक सुपरवाइजर होता है। तो करीब हम लोगों ने 46,000 इनोमिनेटर लगाए हैं, तो करीब

0: 8-9 हज़ार सुपरवाइजर लगाए हैं
1: जी।
0: फिर उनके ऊपर होते हैं चार्ज ऑफिसर और चार्ज ऑफिसर के ऊपर होते हैं डीएम, डीएम, एडीएम और एसडीएम अपने अपने एरिया के हिसाब से। तो जो मेन डिस्ट्रिक्ट का जो है इंचार्ज सेंसस का वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। जो इनुमरेटर्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं और बाकी के दूसरे डिपार्टमेंट्स के जहां पर हैं। सिमिलरली जो सुपरवाइजर हैं वो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के सीनियर लोग हैं। हर इनुमरेटर के पास एक अपना आइडेंटिटी कार्ड रहेगा, एक उसके पास अपॉइंटमेंट लेटर रहेगा, तो आप देख सकते हैं, अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं। और जिस डिपार्टमेंट का होगा उस डिपार्टमेंट का भी उसके पास कार्ड होगा। कोई आपको परेशानी है तो आप अपने एरिया के जो एसडीएम है या डीएम है उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। वैसे तो हम लोगों ने एक एलोबोरेट वो कार्यक्रम चलाया है जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सभी आरडब्ल्यूएच के साथ मीटिंग कर रहे हैं और पब्लिसिटी भी हमारी हो रही है, तो ऐसी परेशानी होनी नहीं चाहिए। लेकिन आप अपना संतुष्टि करने कोई आता है, आपको विजिट करने आता है, तो उसका आई कार्ड देखें, वो देखें। और दूसरी बात ये कि जो हमारी एमसीडी एरिया में जनगणना है पहले फेज की, वो हमारी 16 मई से शुरू हो रही है
1: जी।
0: 16 मई से लेके 14 जून तक, तो उस समय लोग आएंगे वहाँ पर
1: जी, जी। यानी एक स्पेसिफिक टाइम है और जो लोग आएंगे उनके पास अपना
0: आई कार्ड
1: ही होगा और उस तरह के दस्तावेज होंगे कि उनसे हम पूछ सकते हैं। और ये ज्यादातर उस तरह के लोग हैं जो पहले ही सरकारी तंत्र से जुड़े हैं, काम कर रहे हैं,
0: सरकारी कर्मचारी हैं,
1: तो उन पर भरोसा आसानी से किया जा सकता है। आम लोग जो डेटा देंगे वो पूरी तरह सुरक्षित भी रहेगा,
0: वो पूरी तरीके से गोपनीय रहेगा
1: जी।
0: वो जो आपने डेटा दिया है वो इनुमरेटर अगर उसको किसी को वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता है
1: जी। तो जितेंद्र जी मैं ये भी जानना चाहूंगी, जैसे जो डेटा दिया गया क्या उसके सत्यापन के लिए भी कुछ और हमें कागजात देने होंगे? अगर एक व्यक्ति दो घरों में रह रहा है, वो अलग अलग जोन में वो घर पड़ते हैं, तो क्या सत्यापन के लिए भी कुछ देना होगा? और जैसे छात्र हैं किराए पर रह रहे हैं तो उनका परिवार कहीं और है, वो कहीं और है, ऐसी परिस्थितियों में क्या करना होगा?
2: देखिए हमारे जनगणना में हम एक चीज को हम फॉलो करते हैं जिसको हम कहते हैं डिफेक्टो मेथड, मतलब जो जहाँ पे है नॉर्मली जो जहाँ पे रह रहे हैं हम वहाँ पे उनको गिनेंगे
1: जी।
2: तो जैसे आप अभी दो ग्रुप ऑफ पीपल का नाम लिए, एक तो जो रेंट में रहने वाले लोग और जो एक स्टूडेंट्स, और जिसका नंबर शायद बहुत ही ज्यादा है दिल्ली जैसे जगह में, अगर वो लोग नॉर्मली यहाँ पे रहते हैं
1: जी।
2: और सेंसस के दौरान अगर उनको यहीं पे अगर पाया जाता है, जो भी एनिमेटर उनके घर में जाएंगे तो उनकी गिनती यहीं होनी चाहिए
1: जी।
2: और इसमें आपने और जो दूसरे जो सवाल पूछे कि सत्यापन कैसे किया जाएगा, तो सेंसस में हम कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं पूछते हैं
1: जी।
2: कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है, रेस्पोंडेंट जैसे क्वेश्चन का आंसर देंगे हम उस चीज को रिकॉर्ड करते हैं और ये टोटली ये रेस्पोंडेंट बेस्ड आंसर होती है ये, तो इसमें उसको वेरिफिकेशन करने की कोई स्कोप नहीं है
1: जी।
2: तो जो भी एनुमरेटर जाएंगे वो केवल हमारे जो शेड्यूल में जो दिया हुआ क्वेश्चन को वो पूछेंगे और रेस्पोंडेंट जो आंसर देगा उसको वो रिकॉर्ड करेंगे
1: जी।
2: और ज्यादातर ये हमारे दिल्ली जैसे जगह पे के हम लोग देखे हैं पिछले सेंसस में भी कि जो रेंट में रहते हैं या तो जो स्टूडेंट्स जो बाहर से आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, उनका यहाँ पे गिनती सही नंबर पे होती नहीं है
1: जी।
2: और इस बार हम काफी इस चीज के ऊपर जोर भी दे रहे हैं, जो पब्लिसिटी हमारे जो होती है उसमें भी हम बार बार सभी हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी बताते हैं कि अपने लोकल लेवल पे भी ये जागरूक लाए कि जो रेंट में रहने वाले लोगों को भी यहाँ पे गिना जाए
1: जी।
2: और इसके पीछे का खास एक मकसद भी है, अगर उनके नंबर हम दिल्ली में अगर नहीं गिनेंगे तो बहुत बड़ी एक प्रोपोर्शन लोगों को हम छोड़ देंगे
1: जी।
2: और आप अगर देखेंगे तो दिल्ली के जो भी रिसोर्स है, चाहे वो आपके ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो आपके बेसिक एमिनिटीज जिसमें ड्रिंकिंग वाटर हो, तो ये तो दिल्ली के ही यूज कर रहे हैं, तो अनलेस अनटिल उनका नंबर हमें पता चले बेटर प्लानिंग भी नहीं बना सकते हम दिल्ली के लिए
1: जी।
2: तो ये इससे आपके चैनल के माध्यम से भी हम ये जनरल पब्लिक को ये कहना चाहेंगे कि अगर उनके घरों में कोई पीजी में रह रहा हो या तो कोई रेंट में रह रहा हो तो उनको भी जरूर गिनती कराए जनगणना में।
1: और दिल्ली हम सिर्फ उदाहरण के लिए बोल रहे हैं, भारत वर्ष में ही यानी हर स्थान पर यही प्रक्रिया
2: जी जी जी। ये दिल्ली का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग दिल्ली को देखते हैं, बट ये जो मैंने जो बताया अभी ये पूरे भारत के लिए लागू है
1: जी। अजय जी आपसे जानना चाहूंगी, जैसा कि आपने कहा कि बाद में नीतियां भी बनाई जाएंगी उनका लाभ मिलेगा आम लोगों को, लेकिन कई लोगों के मन में ऐसा भी भाव होगा कि अगर हम न बताना चाहें अपने बारे में, हम जनगणना में भाग न लेना चाहें, तो क्या हम पर कोई कार्रवाई हो सकती है? क्या ये जरूरी है भाग लेना?
0: जरूरी है, सेंसस जो कानून है 1948 का

0: वो हर नागरिक के ऊपर एक जिम्मेवारी देता है कि
1: जी
0: वो सही जानकारी दे
1: जी
0: जो उनसे मांगी जाएगी, जो पूछी जाए।
1: जी और ऐसे में क्या डबल काउंटिंग भी हो जाती है, जैसा कि अभी बात की जितेंद्र जी ने, कि कोई किसी का परिवार मान लिया उत्तर प्रदेश में कहीं रह रहा है छोटे से गांव में, और उनका बच्चा दिल्ली में आकर पढ़ रहा है या मुंबई में है, तो मुंबई में वो रेंट पर रहता है, वहां उसकी गिनती हो गई है। ऐसे में परिवार में जो माता पिता हैं वो भी अगर उसके बारे में बताएं, तो क्या ऐसी कोई प्रक्रिया है जिसमें पता चल पाए कि दो जगह एक ही व्यक्ति का नाम गिना जा चुका है?
0: उसको हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि 100%, लेकिन जो नियम ये है कि जो जहाँ पर नॉर्मली रहता है वहीं पे काउंट होगा।
1: जी
0: अगर कोई बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है तो वो यहीं पे काउंट होगा,
1: जी जो जहां रह रहा है उसकी गिनती
0: नॉर्मली जहाँ
1: वहीं
0: पे
1: पर
0: रह
1: होनी
0: रहा है,
1: चाहिए।
0: या
1: जी
0: सामान्यतः जहाँ पे रह रहा है वहीं पे काउंट होगा, वो वहीं पे उसे अपने आप को काउंट कराना चाहिए।
1: जी जो मकान मालिक होते हैं उनके मन में अपनी संपत्ति को लेकर अक्सर एक डर रहता है, इसीलिए जो रेंट एग्रीमेंट भी होते हैं कई बार वो बहुत डर के साथ बनाते हैं या कुछ क्लॉज उसमें रखते हैं। ऐसे में अगर जनगणना में किराएदारों को उसी संपत्ति पर गिना जाएगा, उनका एड्रेस वही जनगणना में शामिल होगा, तो क्या आगे चलकर मकान मालिक को इससे कोई खतरा हो सकता है?
0: नहीं
1: उन्हें डरना चाहिए क्या इस
0: नहीं
1: बात से?
0: नहीं जो आपने जनगणना में इन्फॉर्मेशन दी है
1: जी
0: वो ना तो कोर्ट उसको मंगाती है ना आरटीआई में वो प्रोवाइड की जाती है।
1: जी यानी जो कहा जा रहा है कि अगर आपके यहाँ कोई किराएदार है, अगर आपके यहाँ कोई स्टूडेंट रह रहा है
0: हाँ
1: और पीजी के रूप में रह रहा है, तो उनकी भी सही जानकारी देनी चाहिए, और आगे चलकर वो आपकी
0: हाँ
1: संपत्ति पर कोई दावा नहीं कर
0: आपकी,
1: सकते,
0: हाँ उसके आधार पे नहीं कर
1: उसके
0: सकता है,
1: आधार पर नहीं
0: उसके
1: कर
0: आधार।
1: सकते हैं। जी मैं अब जितेंद्र जी आपकी पसंद का कोई गाना यहाँ पर सुनवाना चाहती हूँ अपने श्रोताओं को।
2: मेरे पसंद का एक गाना आप चला सकते हैं, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता
1: जी तो आपकी पसंद का गाना सुनवा
2: जी।
1: रहे हैं।

0: गाने के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं जनगणना की और हमारे साथ स्टूडियो में इस समय हैं श्री अजय गर्ग। आप भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं और डायरेक्टर ऑफ सेंसस दिल्ली हैं, और साथ हैं डॉक्टर जितेंद्र गौड़ा, आप डिप्टी डायरेक्टर हैं डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस में, और हमारे दोनों ही जो विशेषज्ञ हैं हमारी जानकारी बढ़ा रहे हैं जनगणना की पूरी प्रक्रिया के बारे में। तो अजय जी, आपसे अब मैं ये जानना चाहूंगी कि जनगणना का प्रोसेस है आपने बताया, और माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन जो हमने सुना उसमें भी उन्होंने कहा कि शुरुआत जो है वो जनता को अपनी ओर से करनी है, दो चरण इसके आमतौर पर होंगे। तो वो पहला चरण क्या है, हम किस तरह से ऑनलाइन कैसे शुरुआत करेंगे, कैसे अपनी जानकारी देंगे?
1: हाँ, इस बार जैसे सेल्फ इनुमरेशन कहते हैं, स्वगणना उसको रखा गया है। तो इसमें जैसे हम एमसीडी एरिया का ले लें, तो एमसीडी एरिया में 1 मई से लेकर 15 मई तक आप स्वगणना कर सकते हैं। स्वगणना मतलब सेल्फ इनुमरेशन का मतलब ये है कि आप उस पोर्टल पे चले जाएं
0: जी,
1: और बहुत आसान है, अपनी डिटेल खुद भर दें उसमें, मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं भरने में
0: जी।
1: और जैसे ही आपने भर के उसको आपने सबमिट किया पोर्टल पे, तो आपका एक नंबर जनरेट हो जाता है
0: जी,
1: जिसे सेल्फ इनुमरेशन आईडी बोलते हैं। तो इनुमरेटर जब आपके यहाँ पे आएगा तो आप उसे अपनी ऐसी आईडी दे देंगे, तो फिर वो नहीं भरेगा डिटेल, जो आपकी डिटेल है उसके पास आ जाएगी
0: जी,
1: तो वो उसके हिसाब से आगे। तो इससे काम काफी त्वरित हो जाएगा। बाहर के कई पाश्चात्य देशों में स्वगणना का है, तो हमारे यहाँ पर ये पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। डिजिटल सेंसस का एक एक कंपोनेंट है
0: जी।
1: और दूसरा पक्ष क्या होता है, जब हमारा 1 से 15 तक स्वगणना है, सेल्फ इनुमरेशन है, फिर 16 मई से लेकर 14 जून तक एमसीडी वाले एरिया में
0: जी,
1: हमारा फील्ड ऑपरेशन मतलब इनुमरेटर घर घर जाएंगे, और जिन्होंने स्वगणना नहीं कर पाते हैं तो वो उनका डिटेल इकट्ठी करेंगे, और स्वगणना वालों की, सेल्फ इनुमरेशन वालों की सिर्फ ऐसी आईडी ले लेंगे, नंबर ले लेंगे और
0: जी,
1: इस तरीके
0: तो प्रक्रिया जल्दी भी हो जाएगी, समय
1: जल्दी
0: कम लगेगा,
1: बहुत जल्दी हो जाएगी
0: जी। हाँ। ऐसे में मुझे ये जानना है कि जब जनगणना हो रही है और घर पर अधिकारी आए हैं, उन्हें डिटेल देनी है, ऐसे में अगर कुछ समय के लिए कोई विदेशी नागरिक किसी परिवार में रुके हुए हैं या कोई ट्रैवलर हैं वो रुके हैं किसी वजह से, आजकल बीएनबी सिस्टम भी है तो घरों में पेइंग गेस्ट के रूप में कुछ समय के लिए रुकते हैं, क्या उनकी डिटेल भी देनी जरूरी है?
1: देखिए, व्यक्ति की जो डिटेल है वो तो हमारा जो नेक्स्ट फेज होगा पॉपुलेशन इनुमरेशन वाला, उसमें ली जाती है। अभी तो बेसिकली घरों का सूचीकरण हो रहा है
0: जी,
1: एक तरीके से हम जो हाउसेज हैं उनकी डिटेल इकट्ठी कर रहे हैं, बस ये जरूर पता कर रहे हैं कि भाई कितने वो, मतलब एक ही आदमी बताते हैं जो हेड ऑफ द हाउस होल्ड है
0: जी,
1: कि भाई हमारे इसमें 4 लोग हैं या 5 लोग हैं
0: जी। ऐसे में जिस व्यक्ति के नाम वो मकान है, अगर उनका देहांत हो चुका है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई है, तो किसका नाम वहाँ लिखवाया जाएगा मुखिया के तौर पर, परिवार के मुखिया के तौर पर?
1: हेड ऑफ द हाउस होल्ड तो कोई जरूरी नहीं है कि वो घर का मालिक ही हो, जो भी वहाँ पर, बेसिकली वो एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में उनकी जानकारी दे रहा है घर के बारे में, जिसको घर के बारे में मालूम हो,
0: तो उस एड्रेस पर एक व्यक्ति रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को और वो परिवार की
1: जानकारी दे रहा है
0: जी। तो इस तरह के कंफ्यूजन नहीं रखने हैं कि किसके नाम मकान है,
1: नहीं,
0: और
1: नहीं,
0: वो
1: नहीं,
0: व्यक्ति
1: वो नहीं
0: जी।
1: बात यह है कि कोई परिवार रह रहा है ये घर में, इस मान लीजिए इधर कोई रह रहा है
0: जी,
1: तो इसको इस घर में कितने लोग रह रहे हैं, इसके क्या स्ट्रक्चर्स की एट्रीब्यूट है वो
0: जी वो बताने हैं। जितेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगी, जैसे अभी सर ने बताया कि एक घर का रिप्रेजेंटेशन इसमें हो रहा है
1: जी,
0: तो जो कच्ची कॉलोनियां होती
1: जी,
0: हैं, झुग्गी बस्ती
1: जी,
0: जो है
1: जी,
0: जैसे एक परिवार वहां रह रहा है, वो एड्रेस कहीं कागजों पर पक्का नहीं है
1: जी,
0: तो ऐसे में वो क्या करें
2: जी? देखिए, जनगणना में हम कभी ये नहीं देखने के लिए कोशिश करते हैं कि ये घर ऑथोराइज कॉलोनी में है कि अनऑथोराइज कॉलोनी में है, रहने वाले आदमी के नाम पे ये कागजात बनाए कि नहीं बनाए, ये हमें नहीं देखना है
0: जी।
2: हमारा जो मकसद है कि पूरे अगर कोई एरिया, जैसे आप, मैं दिल्ली का ही फिर से एग्जांपल दूंगा यहाँ पे, तो जैसे दिल्ली में जैसे सर बता रहे थे कि 46,000 के आसपास हम लोगों ने ब्लॉक्स बनाए हैं, तो इन ब्लॉक्स में जितने भी स्ट्रक्चर्स है, कहने का मतलब है जितने भी स्ट्रक्चर मकान तो ये भी होंगे, उनको हम पहले फर्स्ट फेज में उसका हम कवर करेंगे
0: जी,
2: जिसको हम कहते हैं मकान सूचीकरण और हाउसिंग सेंसस, उसमें जाके पूरी डिटेल लिया जाएगा। तो इसमें कहीं पर भी हम ये नहीं पूछ रहे हैं जो स्ट्रक्चर में जो रहने वाले पर्सन जो है एक्चुअल उसका वो ओनर है कि नहीं है
0: जी,
2: ये हम कभी नहीं पूछते हैं। और हम सेंसस में हम सभी जगह, चाहे वो ऑथराइज हो, चाहे वो स्लम हो, चाहे वो झुग्गी जो आप बता रहे थे, हम सभी जगह हम उसको जाके सेंसस कराएंगे
0: जी।
2: हाँ, और इसमें कोई

0: लीगैलिटी देखने का कहीं पर भी स्कोप नहीं है। अगर हमारे जो शेड्यूल भी अगर आप देखेंगे, जिसमें हम 33 क्वेश्चन पूछने वाले हैं अभी
1: जी
0: पहला चरण में, तो यहाँ पर कहीं पे लीगल डॉक्यूमेंट्स का पूछने का कहीं पर भी प्रावधान ही नहीं है।
1: जी अजय जी, आपसे जानना चाहूंगी, अगर किसी वजह से गलत सूचना दे दी गई है परिवार के किसी सदस्य के द्वारा और वो बाद में सही करवानी है, तो क्या ये संभव है? इसका क्या प्रोसेस होगा?
2: क्योंकि इस बार डिजिटल है, ऐप के थ्रू डिटेल इकट्ठी की जाती है,
1: जी
2: तो अगर ऐप में मतलब जो एन्यूमरेटर है उसने सबमिट कर दिया तो फिर चेंज नहीं होगी वो,
1: फिर उसमें सुधार नहीं हो
2: फिर उसमें
1: सकता।
2: सुधार नहीं होगा।
1: जी, जैसे गांव देहात में होता है कि माता पिता अकेले रह रहे हैं, वृद्ध हैं, उन्हें पता नहीं है कि बच्चों ने जहां रह रहे हैं वहां अपनी जानकारी दे दी है और वो भी बता देते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो परिवार का सदस्य तो है ही, तो वो डबल एक तरह से हो गया प्रोसेस, तो उसमें क्या किया जा सकता?
2: देखिए डुप्लीकेशन हो सकता है, जो यहाँ पर जैसे मैंने पहले कहा कि इस फेज में हम जो कर रहे हैं वो हाउसिंग सेंसस कर रहे हैं,
1: जी
2: तो उसमें हम मोटा मोटी यही मांग रहे हैं कि जो आदमी उस घर में नॉर्मली रहता है, तो हो सकता है कि लोग कुछ लोग इस तरीके का,
1: जी
2: वैसे तो इन्यूमरेटर उनको जाके समझाता है प्रॉपरली, वही इन्यूमरेटर जाके समझाता है कि भाई जो बाहर रह रहे हैं वो मतलब उस तरीके से उनको जानकारी देता
1: जी
2: है,
1: उस समय भी वो उनको पहले समझाया जाएगा,
2: समझाएगा
1: तब उनसे डिटेल ली जाएगी।
2: समझे।
1: जी, और जो घर लंबे समय तक बंद मिले उनके बिहाफ पर कौन जानकारी देगा?
2: नहीं वो तो लॉक लिख के हम आगे बढ़ जाते हैं,
1: जी
2: लॉक के
1: ठीक है,
2: लिए।
1: तो जितेंद्र जी अब
0: इसमें
1: जाना
0: मैं थोड़ा
1: चाहेंगे।
0: सा, सर ने तो बता दिए, बट जो हमारे जो एन्यूमरेटर या तो उनके ऊपर जो सुपरवाइजर होते हैं उनका बहुत ही एग्जॉस्टिव ट्रेनिंग होती है
1: जी
0: 3 दिन की, और इस ट्रेनिंग के दौरान हम उनको अच्छे से समझाते हैं कि हमारे सेंसस के जो कॉन्सेप्ट है, जैसे नॉर्मली रिसाइडिंग कौन हो सकते हैं, जैसे आपका जो सवाल था
1: जी
0: कि अगर एक स्टूडेंट यहाँ आके पढ़ रहा है और उसके पेरेंट्स उसके होम स्टेट में हैं, तो वो एन्यूमरेटर जब उनके घर विजिट करेंगे तो वो जनरली कुछ प्रोबिंग क्वेश्चंस पूछेंगे,
1: जी
0: जैसे सपोज ओल्ड पेरेंट्स है तो उनको ये पूछेंगे कि आपके बच्चे क्या आपके साथ रह रहे हैं कि वो बाहर रह रहे हैं, तो इस तरीके एकदम से जाके ये सवाल नहीं करेंगे कि आपके इस घर में कितने लोग रहते हैं, थोड़ी सी प्रोबिंग टेक्निक्स को यूज करके वो अपने क्वेश्चन करेंगे,
1: जी
0: ताकि हमारा जो सही जो सवाल है उनसे हम निकाल सकते हैं या तो पूछ सकते हैं ले सकते हैं उनसे।
1: जी
0: और लॉक्ड वाला सर ने बता दिए, बट हमारे जो पहला चरण का जो समय सीमा जो है वो 30 दिन की होती है, तो ये 30 दिन के अंदर अगर एनुमरेटर फर्स्ट या सेकेंड डे में जाके देखा कि घर लॉक्ड है, तो उसका कोशिश ये होनी चाहिए कि वो सेकेंड या थर्ड टाइम भी जाके उसको चेक कर ले, क्रॉस चेक कर ले। कई बार जैसे जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं वो सुबह वो निकल जाते हैं अपने काम में, तो मैं भी अगले दिन वो शाम को जाए,
1: जी
0: और जैसे ऐसे भी परिवार है जो मंडे से लेके फ्राइडे तक बहुत बिजी होते हैं, तो उनको रिविजिट करने के लिए वो एक बार सैटरडे या तो संडे को चले जाए, तो
1: जी
0: एक बार रिकन्फर्म करके उसको लॉक या तो वैकेंट लिखे,
1: जी
0: ताकि हमारे यहाँ पे जो लोग जो रहने वाले एक्चुअल जो वो ना छूटे,
1: जी
0: मेन पर्पज हमारा वो है, इसीलिए 30 दिन का वो दिया गया है विंडो पीरियड। और ये 30 डेज के बाद भी अगर उनको रिकन्फर्मेशन के बाद भी पता चलती है कि घर वैकेंट है लॉक्ड है, तो उनको वही मार्क करनी है लॉक या वैकेंट।
1: जी
0: जी
1: यानी पूरा प्रयास किया जाएगा कि
0: जी
1: सही जानकारी दर्ज हो
0: जी
1: और सही समय पर भी हो, जो सुविधाजनक
2: जी
1: समय
2: हाँ
1: है।
2: जी
1: जी
2: उसमें बेसिकली जो जितेंद्र ने बोला कि जो लॉक्ड हाउस है उसको एक दो बार,
1: जी प्रयास किया जाएगा।
2: एक दो बार फिर से विजिट किया जाता है। जी
1: जी यहाँ अजय जी आपसे ही जानना चाहूंगी, जैसा अभी बताया जितेंद्र जी ने कि प्रशिक्षण दिया गया है और बहुत सारी बातें उसमें बताई गई हैं, तो आपने भी बातचीत के माध्यम से बताया कि कई चीजें नई हैं, फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो पहले जनगणना हुई है भारत में और जो इस बार हो रही है, तकनीकी तौर पर, व्यवहारिक तौर पर क्या अंतर है प्रक्रिया में?
2: तकनीकी तौर पर यह है कि इसमें हम डिजिटल टूल्स का
1: जी
2: इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके 4 डिजिटल टूल हम इस्तेमाल कर रहे हैं। पहला तो है जिसे हम कहते हैं कि CMMS पोर्टल,
1: जी
2: जहां पर पूरा सेंसस का जो मैनेजमेंट है, तो उसको हम इसके थ्रू, इसमें जितने भी जैसे पूरी कंट्री में करीब 34 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयज उनको इंगेज किया जा रहा है सेंसस प्रोसेस के लिए, तो उन सबका रजिस्ट्रेशन हो गया,
1: जी
2: फिर उनको अलॉटमेंट है कहाँ पे ड्यूटी करनी है, पूरा उसका मैनेजमेंट इसके माध्यम से हो रहा है। दूसरा है हाउस लिस्टिंग ब्लॉक क्रिएटर, तो एक अगेन ये पोर्टल है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि सैटेलाइट इमेजरी जो होती है
1: जी
2: गांव की, म्यूनिसिपल वार्ड की, सब डिस्ट्रिक्ट की, उसके ऊपर हम उसको जियो रेफरेंस्ड ब्लॉक्स काट रहे हैं। मतलब एक ब्लॉक इनोमरेटर को दिया जाता है ना, तो जैसे दिल्ली में मैंने आपको बताया कि दिल्ली को हमने 46,000 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया है,
1: जी
2: और ये 46,000 ब्लॉक जियो रेफरेंस्ड है। तीसरा जो हम टूल इस्तेमाल कर

0: कर रहे हैं सेल्फ इन्यूमरेशन पोर्टल, जिसमें व्यक्ति अपना खुद का सेल्फ इन्यूमरेशन कर सकता है। और जो चौथा है, पहले बड़े बड़े फॉर्म लेके जाते थे हमारे इन्यूमरेटर, जिसमें वो डिटेल लिखते थे, अब सिर्फ मोबाइल फोन पे ऐप के माध्यम से वो डिटेल इकट्ठी कर रहे हैं, वो उससे बहुत तेजी से डेटा इकट्ठा हो रहा है
1: जी।
0: पहले 20-25 मिनट लगता था उसको भरने में फॉर्म को, अब हार्डली 10 मिनट लगता है
1: जी। और व्यावहारिक तौर पर आपने बताया कि कुछ प्रश्न जो हैं वो और जोड़े गए हैं, लेकिन वो भी इसलिए कि बाद में बेहतर सुविधाएं दी जा सके।
0: हाँ, क्वेश्चन ज्यादा नहीं जोड़े गए 2011 के, उससे
1: जी
0: कुछ ही अमेंडमेंट हुए हैं। बहुत एक्चुअली क्या होता है, सभी डिपार्टमेंट से उनकी रिक्वायरमेंट पूछी जाती है, एक हाई लेवल हाई पावर्ड कमेटी होती है
1: जी,
0: वो डिसाइड करती है कि सेंसस में कौन से सवाल, कि कोई डिपार्टमेंट कहता था मुझे इसका चाहिए, डिटेल चाहिए
1: जी। जैसे कई बार आम लोग जो हैं वो इस तरह की शिकायतें भी करते हैं कि इस एरिया में हमारे इतने लोग हैं लेकिन सीधी बस सुविधा कोई नहीं है, या हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन की जो है वो समस्या है, या बिजली पानी की दिक्कत है, ये होता है। तो हम एक विभाग को जानकारी दे रहे हैं लेकिन आगे ये कई विभागों तक पहुंचती है और कई बेहतर सुविधाएं हमें मिलती हैं, उसमें चिकित्सा सुविधा भी हुई, कई तरह के सरकारी डिस्पेंसरीज, ये सब। तो इसीलिए सही जानकारी देना बहुत जरूरी है
0: जी।
1: अब जितेंद्र जी, ये बताएं कि जब हम अपनी जानकारी देते हैं सेंसस के लिए, तो क्या इससे कोई आर्थिक लाभ भी होगा? कुछ लोगों के मन में ये बात है कि हमें बदले में सरकार से कुछ पैसा मिलेगा क्या, हम अपनी जानकारी दे रहे हैं या डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं तो।
2: देखिए, सेंसस में कोई डायरेक्ट बेनिफिट पब्लिक के लिए नहीं है, बट अगर आप देखेंगे तो सेंसस एकमात्र सोर्स है जो वर्ल्ड लेवल, जो आपके अर्बन एरिया का सबसे जो लोएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है
1: जी,
2: और रूरल एरिया में जो विलेज है, तो इतने लोएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर डेटा प्रोवाइड करती है। और जैसे हम बता रहे थे, सर भी बता रहे थे कि सेंसस दो फेज में हो रही है। पहला फेज में हम हाउस लिस्टिंग करते हैं और हाउस के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक को भी कलेक्ट करते हैं, और सेकेंड में पॉपुलेशन एनुमरेशन करेंगे, मतलब उतने वार्ड में, उतने एरिया का वार्ड का जो भी होगा उसमें कितने लोग रहते हैं वो हम जानकारी इकट्ठा करते हैं
1: जी।
2: सिमिलरली विलेज का भी, तो इतने छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जब ये गवर्नमेंट के पास अवेलेबल होगा कि इतने घरों में, मे बी इतने नंबर ऑफ घरों में अभी एलपीजी कनेक्शन नहीं है, कि लैट्रिन फैसिलिटी नहीं है, कि इनके अभी भी जो मकान जो है वो कच्चा है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे स्कीम के लिए शायद वो बेनिफिशियरी बन जाएंगे। और या तो आप अगर आप देखेंगे उज्ज्वला योजना जो चल रही है अभी सरकार के द्वारा, तो उसमें जिस जिस घरों में अभी एलपीजी कनेक्शन नहीं है, तो वहां के वो सब घर अभी यहाँ के लिए बेनिफिशियरी बन जाएंगे
1: जी।
2: तो ये एक डायरेक्टली कनेक्शन है सेंसस का डेटा एंड हमारे गवर्नमेंट के पॉलिसी एंड प्रोग्राम। तो यहाँ पे आप एकदम डायरेक्ट बेनिफिट, जैसे आर्थिक जैसे आप बता रहे थे, वो ना देख के जितने लोग यहाँ पे सही तरीके से अपने पार्टिसिपेशन करेंगे और आंसर्स देंगे
1: जी,
2: उतने अच्छे पॉलिसी एंड प्रोग्राम बन सकती है देश के लिए, वो भी छोटे से छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे
1: जी। तो
0: जैसे आपको एक उदाहरण दें कि हम फेज वन में डिटेल इकट्ठी करते हैं कि किस तरीके का ईंधन इस्तेमाल होता है घर में, तो फिर हमारे पास पूरा डेटा है कि भारत के कौन से हिस्से में लकड़ी इस्तेमाल हो रही है, कितने घरों में एलपीजी है, क्या है, हमारे पास डेटा है, तो उसके हिसाब से हम एक प्लान कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे जरूरत है। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीजें, जैसे ड्रिंकिंग वाटर की है, तो हम पता करते हैं कि साहब कितने घरों में नल है, तो हमारे पास हमें ये मालूम पड़ जाता है कि साहब इस डिस्ट्रिक्ट का ये जो हिस्सा है इन इन ब्लॉक्स में, वहां पर वो कुएं से पानी लाते हैं, किसी पोखर से पानी लाते हैं, तो फिर हम एक इंटरवेंशन स्कीम बना सकते हैं कि साहब यहाँ पे हमें लगानी है
1: जी,
0: यहाँ पे टैप वाटर पहुंचानी है, तो जैसे सीवर फैसिलिटी है उसकी भी डिटेल हम इकट्ठी करते हैं, तो हमें मालूम पड़ जाता है कि इस कॉलोनी में सीवर फैसिलिटी नहीं है, तो ये डेटा इस तरीके से इस्तेमाल होता है। जैसे बैंकिंग का हो गया
1: जी,
0: तो बैंकिंग का हमें मालूम पड़ गया कि साहब इस शहर में, इस शहर के पर्टिकुलर पार्ट में बैंकिंग बहुत कम लोगों के अकाउंट खुले हैं, तो उस हिसाब से स्कीम बन सकती है कि कैसे उसको प्रमोट किया जाए।
1: यानी ये जो डेटा है बहुत ही विस्तारित तरीके से सोचा जाता है इस पर, और किसी एक इंडिविजुअल को टारगेट नहीं किया जाता है, और जो सोचा जाता है वो पूरी सोसाइटी के बेनिफिट के लिए सोचा जाता है कि जिस चीज का अभाव है उसे हम दूर कर पाए जी। यहाँ एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी अजय जी, आपने बातचीत में कहा कि टीचर्स जो हैं वो जाएंगे डेटा कलेक्शन के लिए,
0: आपसे एक चीज शेयर करूंगा, उनका काम बहुत अच्छा रहा है
1: जी,
0: सभी जो हमारे शिक्षक टीचिंग फ्रेटर्निटी से हैं
1: जी,
0: बहुत अच्छा काम हमारे पिछले

0: रिसर्चेज में हुआ है, और चूंकि एक तो उन्हें अपने एरिया का आइडिया भी होता है
1: जी
0: तो वो भी फैसिलिटेट होता है। तो यूजुअली हम क्या करते हैं, जैसे इस बार हम वैकेशन के टाइम पे कर रहे हैं तो उनकी अवेलेबिलिटी भी है
1: जी
0: और बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने।
1: जी
0: बाकी डिपार्टमेंट से भी लेते हैं, लेकिन हाँ ये बात सही है कि टीचिंग फेटर्निटी से।
1: जी तो जो भी शिक्षक सुन रहे हैं हमारे कार्यक्रम को, उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि क्योंकि आप बहुत अच्छा काम करते हैं और अपने एरिया में आप सम्मानित व्यक्ति हैं और अपने एरिया को आप अच्छे से जानते हैं, इसलिए ये जिम्मेदारी आपको
0: बिल्कुल
1: सौंपी गई है।
0: बिल्कुल।
1: जी तो इसी बात पर अजय जी, कौन सा एक गाना आप अगला हमें सुनवा रहे हैं?
0: साथी हाथ बढ़ाना।
1: जी बहुत ही प्यारा सा गाना है और मुझे लगता है कि हमारे इस काम के लिए सभी साथियों का हाथ बढ़ाना बहुत जरूरी है। सभी एक दूसरे का साथ देंगे तो ये एक बहुत बड़ा जो काम है वो आसानी से हो जाएगा।

तो इस बहुत ही प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं जनगणना की। हमारे साथ कार्यक्रम में श्री अजय गर्ग, भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी आप हैं और डायरेक्टर ऑफ सेंसस दिल्ली हैं। साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर जितेंद्र गौड़ा, आप डिप्टी डायरेक्टर हैं डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस में। और हमने अभी तक जाना कि जनगणना जो है ये क्यों जरूरी है, हमें अपनी ओर से क्या सहयोग करना है और कैसे सरकार जो है एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया इसके लिए अपना रही है, बहुत डिटेल में तैयारी की गई है ताकि

0: हमारे सही जानकारी सरकार तक पहुंचे और बदले में हमें सुविधाएं मिले और साथ ही ऐसे फैसले लिए जा सके जो हमारे लिए आने वाले समय में बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर मैं जितेंद्र जी आपसे अनुरोध करना चाहूंगी कि जो हमें फर्स्ट फेज में अपनी जानकारी देनी है उसके लिए जो ऐप है या वेबसाइट है कैसे करना है उसके बारे में आप हमें बताएं।
1: जी, ये पहला सेंसस है जहाँ पे सेल्फ एनुमरेशन इंट्रोड्यूस हुआ है।
0: जी,
1: इससे पहले कभी ऐसे हुआ नहीं था।
0: हम्म,
1: और ये जो जानकारी देने का जो URL जो पोर्टल है वो sec.census.gov.in, इसमें आप जाके,
0: एक बार दोहरा दीजिए।
1: जी, SE फॉर सेल्फ एनुमरेशन डॉट सेंसस
0: जी
1: डॉट जीओवी डॉट इन,
0: जी,
1: इस पोर्टल में जाके आप अपने मोबाइल नंबर, घर का कोई भी सदस्य का मोबाइल नंबर से आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं।
0: जी,
1: उसके बाद अपने पसंदीदा भाषा भी चुन सकते हैं। और उसके बाद आप अपने जो जानकारी जो है,
0: जी,
1: जो हमारे पहला चरण में जितने भी 30 थे जो क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को आप जाके अपने पसंदीदा भाषा में पढ़ के उसको आप अपना जवाब दे सकते हो।
0: जी,
1: और एक चीज आपको ध्यान रखना होगा, एक बार आपने भाषा को चयन करने के बाद अब आगे जाके उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए किसी ने अगर हिंदी अगर चुना है रजिस्ट्रेशन के बाद, तो उसके पूरे जो आने वाले जो सवाल जो रहेंगे वो हिंदी में ही होंगे। और अगर किसी ने अंग्रेज अगर या तो इंग्लिश अगर उसने चुना है तो आने वाले सभी सवाल उसका इंग्लिश में ही मिलेगा।
0: जी,
1: तो जब भी अपना भाषा को वो चयन करे वो थोड़ा ध्यान से करे, क्योंकि आगे जाके वो चेंज नहीं कर सकते हैं वो। और ये सेल्फ एनुमरेशन का जो अभी टाइमलाइन जो है हमारे MCD एरियाज के लिए, 1 मई से लेके 15 मई,
0: जी,
1: 15 दिन के अंदर आप अपना जानकारी अगर चाहेंगे तो इसी पोर्टल में जाके दे सकते हैं। और जैसे सर ने भी बताए थे कि एक बार आपने जानकारी आप इस पोर्टल में जाके देने के बाद 11 डिजिट का एक ऐसी ID जनरेट होगी, और इस ID को आप अपने पास सुरक्षित रखिएगा।
0: जी,
1: जब आपके घरों में एन्यूमरेटर विजिट करेंगे तो तब उनको आप ये ID दीजिएगा, ताकि इस ID के द्वारा वो आपका दिया हुआ जानकारी को वो फेच कर सकते हैं HLO ऐप में।
0: जी,
1: ये हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन ऐप जो है एक डिजिटल एक ऐप है जिसके द्वारा पूरी जानकारी इसी सेंसस में इकट्ठा होने वाला है।
0: HLO ऐप,
1: हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन ऐप।
0: जी, और क्या इसके लिए कोई हेल्पलाइन नंबर भी है अगर कोई समझना चाहे इस प्रक्रिया को?
1: जी, इस बार सेंसस में जो हेल्पलाइन नंबर जो रखा गया है वो है 1855। तो अगर कोई दिल्ली के रहने वाले कोई व्यक्ति या तो कोई भी सिटीजन, अगर यहाँ पे से रहने वाले कोई भी पर्सन अगर इस नंबर पे फोन करेंगे सेंसस को लेके, अगर कोई उनके मन में कोई प्रश्न हो तो इस नंबर पे फोन करेंगे तो हमारे जो भी कंसर्न जो पर्सन है इस लाइन को जो हैंडल करते हैं वो उनको वो हेल्प करेंगे, वो सहायता करेंगे।
0: जी, उन्हें समझा भी सकते हैं कि कैसे एंटर करनी है
1: डिटेल्स।
0: जी, और अजय जी, अब आपसे ये सवाल कि सच में जो लोग मुसाफिर हैं, ना घर है ना ठिकाना है, होमलेस लोग हैं, जो जैसे बेगर्स भी हैं या कुछ उस तरह का काम करते हैं, फेरी वाले होते हैं कई लोग, या कोई उस तरह की स्थिति है, तो वो कैसे अपने आप को दर्ज करें, उन्हें क्या जानकारी देनी है?
2: जो होमलेस हैं तो होमलेस का जो उनका मकान सूचीकरण का तो नहीं होता है
0: जी,
2: जो दूसरा फेज होता है जिसको हम पॉपुलेशन एनुमरेशन कहते हैं, उस समय उनकी गणना होती है। तो उसमें एक दिन हमारा फिक्स होता है, अक्सर 28 फरवरी होता है, 28 फरवरी की रात को
0: जी।
2: तो हमारे जितने एनुमरेटर हैं पूरे, जहां पर भी इन लोगों का हमारे पास, पहले हम लोग मैपिंग कर लेते हैं कि अधिकतर इन लोगों का यहाँ रहने का है, और
0: जी,
2: फिर उनका वो डिटेल इकट्ठी कर लेते हैं
0: जी।
2: इस तरीके से
0: मतलब वो जहाँ भी जिस
2: जहाँ पर भी वहीं पर
0: जी
2: फुटपाथ पे जाते हैं हमारे लोग, पहले मैपिंग कर लेते हैं हम लोग
0: जी,
2: यहाँ फुटपाथ पे लोग रहते हैं वहाँ रहते हैं। तो फिर 28 तारीख की रात को शाम को वहाँ पर जाके सब लोग डिटेल इकट्ठी कर लेते हैं होमलेस की।
0: तो अजय जी, आपसे बातचीत के माध्यम से और जितेंद्र जी ने जो बताया, हमें समझा कि सेंसस जो है वो कितनी जरूरी चीज है, और ये पूरी प्रक्रिया जो है बहुत लंबी प्रक्रिया है जिसमें हमारा योगदान यही है कि हम अपने बारे में सही जानकारी दें, और जो भी हमारे घर पर आ रहे हैं वो एक विश्वसनीय पात्र हैं, वो सरकारी कर्मचारी हैं, उनको हम अपना डेटा दे सकते हैं, और ये डेटा पूरी तरह गोपनीय भी है, और हमसे कुछ ऐसी जानकारी नहीं पूछी जा रही है जिससे बाद में हमें कोई नुकसान हो सकता है। तो इतना भरोसा जो है वो रखना है।
2: बिल्कुल
0: जी। जितेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब घरों में आएंगे, एक तरह का सर्वे ये हो रहा है, ऐसे में जो सवाल वो हमसे पूछेंगे, आम लोगों को जो जवाब देना है उन सवालों का, क्या पहले से वो पता

0: कर सकते हैं कि कौन से सवाल हैं, और इसके अलावा कोई सवाल पूछा जा रहा है तो वो मना कर सकते हैं क्या?
1: जी बिल्कुल, जो सेंसस में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पहले से ही गैजेट में नोटिफाई होती है।
0: जी
1: तो जैसे अभी हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन के लिए कुल 33 क्वेश्चन पूछा जाएगा,
0: जी
1: ये क्वेश्चन की सूची ऑलरेडी ये गैजेट में नोटिफाई हो चुकी है। और HLO स्टार्ट होने से पहले भी ये अपने न्यूज़पेपर में भी आप लोग देख सकते हो, कई बार न्यूज़पेपर में भी ये आती है, ये
0: जी
1: तो ये ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में भी होती है। और पब्लिक अगर जानना चाहेंगे तो गैजेट नोटिफाई जो किया गया क्वेश्चंस को भी वो अपने तरीके से, जैसे इंटरनेट से भी वो लोग देख सकते हैं,
0: जी
1: और हर एक चीज पब्लिक में ही है, पब्लिक डोमेन में ही है, तो उनको भी सब कुछ पता रहता है शुरू से ही कि
0: जी
1: जो एनिमेटर उनके घर में विजिट करेंगे तो वो कौन से सवाल पूछने वाले हैं, तो इसमें कहीं मिसयूज ऑफ उनका जो पावर आप
0: जी
1: या तो पोजीशन का यहाँ पे कुछ सवाल ही नहीं उठता है।
0: जी
1: जी
0: तो
1: जी
0: सवाल पहले से ही हमें पता
1: पता
0: होंगे
1: होता
0: और
1: है।
0: उनके
1: जी
0: सही
1: जी
0: जवाब देने
1: जी
0: हैं।
1: जी
0: घरों में जब हम सदस्यों की संख्या की बात करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जो दिव्यांगजन हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है,
1: जी
0: या न्यू बॉर्न बेबीज हैं उनको नहीं गिना जाता
1: जी
0: है, तो क्या इनका भी बताना इनके बारे में जरूरी है?
1: जी देखिए, सेंसस में चाहे वो कोई भी जेंडर के क्यों ना हो, चाहे कोई भी एज का क्यों ना हो, चाहे
0: जी
1: वो कोई भी दिव्यांग या तो और कोई क्यों ना हो, हम सभी को गिनेंगे।
0: जी
1: और जैसे बताया गया है कि ये नॉर्मली रिसाइडिंग चाहे कोई भी एज का हो, चाहे कोई भी जेंडर का हो, हम उनको गिनेंगे। और इंडिया में ये हमेशा ये देखा गया है जो एल्डरली होते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज जो होते हैं,
0: जी
1: मे भी कुछ दिनों के वो है, और या तो दिव्यांग, तो इनको
0: जी
1: हम जनरली छोड़ देते हैं। तो ये हम आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि जब भी आपके घरों में एनिमेटर आए और आपको ये पूछे कि आपके घरों में नॉर्मली रिसाइडिंग मेंबर की संख्या क्या है,
0: जी
1: तो आप जरूर इन सबको इसमें इंक्लूड करें,
0: जी
1: क्योंकि अगर गवर्नमेंट को सही संख्या जो दिव्यांग हो या तो एल्डरली हो अगर नहीं पता चलेगा, तो उनके लिए जो जरूरत की जो योजनाएं जो है वो नहीं बन सकती है,
0: जी
1: क्योंकि वो एक स्पेशल नीड के कैटेगरी के लोग हैं, और आप दूसरी भाषा में कैसे, वो सबसे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं सोसाइटी के।
0: जी
1: एल्डरली के लिए उनके जेरियाट्रिक केयर की जरूरत होती है, डिजेबल पीपल के लिए स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत होती है,
0: जी
1: कि और कुछ चीजों की जरूरत पड़ सकती है, हेल्थ केयर हो सकती है, एजुकेशन हो सकती है। तो ये एकमात्र के जरिया है जिसके द्वारा हम अपने घरों में जो रहने वाले ऐसे कैटेगरी के लोगों को बताएं, ताकि गवर्नमेंट उनके लिए भी सही योजनाएं प्रोग्राम बना सकती है।
0: जी
1: जी
0: एक आम धारणा रहती है, जब जैसे मतदाता पहचान पत्र होता है
1: जी
0: तो जिन लड़कियों की शादी हो जाती है या
1: जी
0: जो लोग बाहर जाकर नौकरी करते हैं
1: जी
0: वो अपने मूल स्थान पर ही मतदान करना चाहते हैं, तो
1: जी
0: मतदाता पहचान पत्र में एड्रेस चेंज नहीं करते,
1: जी
0: और जब कभी गिनती होती है तो मूल स्थान पर ही करवाते हैं।
1: जी
0: लेकिन ये उससे बिल्कुल अलग
1: बिल्कुल
0: है ना?
1: अलग है।
0: आप जहां रह रही हैं,
1: जी
0: जहां आप काम कर रही हैं, आप वहां पर अपने आप को काउंट कर सकती
1: बिल्कुल
0: हैं। जी
1: जी जैसे नॉर्मली रिसाइडिंग में हमेशा जो टेम्पररी ऑप्शन लोगों को भी गिना जाएगा,
0: जी
1: ये जरूरी नहीं कि जब एनुमरेटर घरों में जाए जितने नॉर्मली रिसाइडिंग के लोग सबके सब अवेलेबल हो, ये
0: जी
1: पॉसिबल नहीं हो सकता
0: जी
1: सभी केसेस में।
0: जी
1: तो अगर कोई अगर टेम्पररी एबसेंट है, चाहे वो काम के लिए बाहर गए हैं या तो पढ़ाई के लिए बाहर गए हैं कुछ दिनों के लिए मैं बात कर रहा हूँ मैं, और या तो मैं भी रिश्तेदारों में चले गए हैं, ऐसे लोगों को भी जो टेम्पररी एबसेंट है बट वो दे आर द नॉर्मली रिसाइडिंग मेंबर ऑफ दैट हाउस होल्ड, तो
0: जी
1: उनको भी आप इसमें गिने।
0: गिनेंगे उनको।
1: और कोई अगर गेस्ट है जो आपके घरों में मे भी कुछ दिन के लिए आए हैं
0: जी
1: और मे भी कुछ दिनों के बाद फिर से वापस चले जाएंगे अपने जहां से आए हैं, तो उनको आप एक्सक्लूड करें, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि हम दिल्ली में ये जानना चाह रहे हैं कि सेंसस के दौरान, और या तो आप कह सकते हैं जिस तारीख को ये डेटा पब्लिश होगी जो कि 1 मार्च 2027,
0: जी
1: तो उसी तारीख में दिल्ली में कितने लोग नॉर्मली रह रहे हैं, ताकि इस नंबर के हिसाब से जो भी पॉलिसी जो भी प्रोग्राम बननी है वो बनेगी।
0: जी आपने दिल्ली की बात की और जनगणना की जो तारीख है वो भी हमें बताई। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि हमें कुछ और राज्यों के बारे में बताएं।
1: जी बिल्कुल, देखिए जैसे हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट ये हमेशा ये समय सीमा दे रखा है कि अप्रैल से लेकर सितंबर, इन महीनों में कोई 30 दिन में
0: जी
1: आप हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। तो दिल्ली के लिए जैसे MCD एरियाज के लिए अभी ये 16 मई से लेके, मतलब जस्ट हमारे सेल्फ एनिमेशन खत्म होती है 15 मई, 1 मई से लेके 15 मई हमारे सेल्फ एनिमेशन होगी,
0: जी
1: 16 मई से लेके 14 जून तक हमारे HLO

0: होगी एमसीडी एरियाज में
1: जी
0: तो इस तरीके का बाकी स्टेट भी बाकी यूनियन टेरिटरी भी ऐसे अपना टाइमलाइन भी पहले से ही वो नोटिफाई कर रखते हैं। जैसे यहाँ पे मैं अगर बताऊं आपका पंजाब जैसे स्टेट में अभी 30 अप्रैल से लेकर 14 मई ये उनका सेल्फ एनुमरेशन का पीरियड है
1: जी
0: और उसके बाद 15 मई से लेकर 13 जून उनका एचएलओ का टाइम है। और आप उत्तर प्रदेश का देखेंगे 7 मई से लेकर 21 मई तक उनका सेल्फ एनुमरेशन है और 22 मई से लेकर 20 जून उनका एचएलओ का पीरियड है।
1: जी
0: हरियाणा का सेल्फ एनुमरेशन का जो पीरियड है वो 16 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल और 1 मई से लेकर 30 मई उनका एचएलओ का पीरियड है।
1: जी
0: तो ऐसे स्टेट अपने अपने सेल्फ एनुमरेशन और एचएलओ का पीरियड को भी वो नोटिफाई करते हैं
1: जी
0: तो पब्लिक को भी पता रहता है कि इसी टाइम में ही एनुमरेटर आएंगे, उसके बाद में भी कोई आएगा तभी उनको हमें जानकारी नहीं देनी है।
1: जी
0: तो सभी चीजें यहाँ पे क्लियर है कि कौन आएगा और उनको अगर पहचानने के लिए हमें क्या क्या देखनी है। जैसे सर ने बताया उनका आइडेंटिटी कार्ड होनी चाहिए
1: जी
0: और टाइमलाइन भी फिक्स है, क्या सवाल पूछा जाएगा वो भी फिक्स है
1: जी
0: और आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाना है चाहे कोई भी हालत में हो,
1: जी
0: आप जो कहेंगे वो उनको रिकॉर्ड करेंगे। तो सभी चीजें यहाँ पे क्लियरली है तो इसलिए पब्लिक को पूरे दिल से मतलब तहे दिल से
1: जी
0: उनको यहाँ पे सपोर्ट करनी चाहिए, पार्टिसिपेट करनी चाहिए ताकि
1: जी
0: सेंसस सही ढंग से हो पाए।
2: जी चाहो तो दिल्ली और जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उनकी टाइमलाइन फिर से बता दीजिए
0: जी
2: एक
0: सर,
2: बार।
0: दिल्ली के लिए अभी जो एमसीडी एरियाज जो है
1: जी
0: इसमें कुल 12 डिस्ट्रिक्ट आते हैं न्यू दिल्ली को छोड़ के। तो यहाँ पे अभी सेल्फ एनुमरेशन जो होगी वो 1 मई से लेके 15 मई तक और उसके बाद ही एचएलओ होगी जिसका टाइमलाइन है 16 मई से लेके 14 जून।
1: जी
0: और राजस्थान का भी यही टाइमलाइन है, मतलब 1 मई से लेके 15 मई तक सेल्फ एनुमरेशन होगी, 16 मई से लेके 14 जून तक एचएलओ होगी। उत्तर प्रदेश का जो एससी आई मीन जो सेल्फ एनुमरेशन का जो टाइमलाइन है वो 7 मई से लेके 21 मई एंड 22 मई से लेके 20 जून तक एचएलओ होगी।
1: जी
0: हरियाणा का 16 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल सेल्फ एनुमरेशन होगी, 1 मई से लेके 30 मई तक एचएलओ होगी। तो एचएलओ हर जगह 30 दिन का ये फिक्स है ये
1: जी
0: टाइमलाइन।
2: एचएलओ का मतलब है जहाँ पे एनुमरेटर घर घर जाएंगे।
0: जी
1: जी तो चलते चलते कौन सा गीत हम सुनवाएंगे अपने श्रोताओं को जितेंद्र जी?
0: चलते चलते मेरे गीत याद रखना।
1: वाह, तो कार्यक्रम के समापन पर बहुत अच्छा सा गाना आपने चुना है, चलते चलते आपको सुनवा रहे हैं यही गीत।

0: तो अजय जी, चलते चलते हमारे माध्यम से आप सभी लोगों से क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं सभी लोगों से सहयोग की अपील करना चाहता हूँ।
0: जी, तो बहुत बड़ी चुनौती ये सामने है, बहुत बड़ा काम है, और आज के हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे सभी जो दोस्त हैं, श्रोता मित्र हैं, वो समझ गए होंगे कि कितने लंबी प्रक्रिया है और बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं, तो हमें भी अपनी ओर से सहयोग करना है। और जैसा अजय जी ने कहा कि सहयोग की अपील जो है वो विभाग हम सभी से कर रहा है, सही जानकारी दें, समय से जानकारी दें, सतर्क भी रहें, लेकिन साथ ही जो परस्पर भरोसा है वो बनाकर रखें, क्योंकि जो ये प्रक्रिया है जनगणना की, ये कहीं ना कहीं दीर्घकालीन उद्देश्य के साथ में है। इसके लक्ष्य यही है कि हमारा लाभ हो सके, हमें फायदा पहुंचाया जा सके। तो अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आकाशवाणी परिवार की ओर से मैं आपको कहती हूँ, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमें जनगणना के विषय में बहुत विस्तार से ये जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: आभार आप।
0: जी, डॉक्टर जितेंद्र गौड़ा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सरल शब्दों में ये पूरी प्रक्रिया आपने हमें समझाई, और अब हमें पता है कि कौन सी वेबसाइट है, क्या प्रक्रिया है, क्या तारीख है। तो हम इस कार्यक्रम के माध्यम से ये जो जानकारी आपने हमारी बढ़ाई है, उसके लिए आपके आभारी हैं।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो कार्यक्रम संयोजक प्रमोद कुमार वत्स के साथ, कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता शाहनवाज खान के साथ, मैं नीलम मलकानिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 से अब आप सभी से लेती हूँ अनुमति। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।

कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।